कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा कस्तो धन सम्पत्ति केही लानु छैन।

0: दुर्गा प्रसाद सेवापति कालिचक साहब सुनखरी शिवसारा सुधा में की नारी कर चढ़ी भारी विपत्ति ले पति चे ऊंचाई बिनति कर चिंता पिटाले गुरु देवता राजा रूप भला मान सका निदान खाली हर बंकन कहीं ज्योति समान देवी के ही सौगर मन देव चंगा कर मिलाई बारी का हर्षित मिलाता नगर में इच्छा बर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सभी स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन बाला का ओ जननो बालका ओ जगमग करने मन चित हरने

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: बीमा को लाभ दिए आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आजै बनौ सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जिउँ
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट म पदक प्रसाद साहबकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 मे 28 तारिक ज्येष्ठ 14 गते बिहीबार द्वादशी तिथि अब स्तुति गरौं।

कपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई साजा भौतिक जगत में नहर दा नारी ले प्रगति पथ को।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शङ्खका पाला भूषित करौ मालस्ती माला दरौ देवौ द्वारौ तिसमा चानन निलौ नागरी गोवर्धनौ तिरिरक्षे बलिरक्षे।

श्री सीतापति माथी भक्ति धरियो शंका गरी थीन जब लग्नु भो शिवजी बताउन कथा श्री रामजी का।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव वसुन कुमा वसुन कालिका गोरक्ष गरुण र दानवहरू नागमा रावण नासिका सञ्चल भई घुमानी।